प्राइमरी स्टूडियो की घड़ी में भी पाँच बज के 19 मिनट 51:52:53 हो रहे हैं। कंप्यूटर नंबर बंद सुनिएगा। कंप्यूटर नंबर 2। ओके।